0: अपने भगत करें प्रद बाला अदरा तेरी हड़ियाई नित नानक नाम तिहाई अदरा तेरी हड़ियाई नित नानक नाम तिहाई वाहे जी का खालसा।
1: तेरी भगत

जिस वेले आख्या गुरु अर्जुन देव ने, मियां मीर जितने तन पर पड़ेंगे छाले उतने सिख होंगे सिद्धक वाले, उतने ही सिख सिद्धक वाले होंगे। जे गुरु ने पाना नहीं मनिया तो सिखा ने फिर पाना क्या मनना है। ते फिर जिस वेले चंदू आया अजे भी मन नहीं भरिया तो साहब जी कहन लगे चंदू साडा मन करदा है असी इशनान करिए। तीन दिन हो गए हैं चौकड़ा मार के बैठे हैं, साडे प्यार वाले जेडे नाल आए सन उन्हां नूं बुलाओ। ओ प्यार वाले गुरु अर्जन देव पातशाह नूं प्यार नाल इस वेले रावी दे किनारे ते लियाए। साहब जी कहन लगे हुण साडा गुरु नानक दे पास जाण दा समां आ गया, असी जपजी साहब पढ़ांगे ते जपजी साहब दा जिस वेले समाप्ति करांगे अपना शरीर अलोप कर लांगे रावी विच ते तुसी वापस हरमंदर साहब अमृतसर चले जाना। ते ए सब नूं आखना कि गुरु अर्जन जी ने उस अकाल पुरख दे पाणे विच रह के उस दे हुकम विच अपना सिर नवाए। ते जपजी साहब जिस वेले गुरु अर्जन देव जी ने आरंभी ते जिस वेले जपजी साहब दा भोग पाया जिन्नी नाम ते आया गए मुशक्कत काल नानक दे मुख उजले गेती छुट्टी नाल रावी विच अपना शरीर अलोप कर लिया। ते मानो अजे भी रावी दी लहरां विचों ए आवाज गुरु अर्जन देव दी आ रही।

प्यारे गुरुदेव जी, सच्चे पातशाह धन धन सतगुरु साहेब श्री गुरु नानक देव जी महाराज, सानू अपने ना पवित्र वचना के द्वारा ये दस रहे हैं कि साड़ी जीवन की यात्रा जो है वो सफल क्यों नहीं हो रही, उसके विच ऑब्स्टैकल्स की हैं। साड़े जीवन की जो विधि है वो किस किस्म की है, तो आओ गुरु बाबा जी के चरणों के विचों पूछिए, महाराज असी अपने जीवन की यात्रा किवें सफल कर सकते हैं, असी अपनी जिंदगी नूं किवें रंगीन बना सकते हैं। तो बाबा जी आखते हैं कि तुहानू तीन चीजा मिलियां, नंबर एक बॉडी माइंड एंड सोल, जो उस दिन शब्द के विच दास ने अर्ज की सी। तो सब तो पहला वह तन नू, शरीर नू जो पॉइंट आउट करते हैं, कहते हैं असी देखते हाँ कि यह जो शरीर सी एक वहीकल सी, एक साधन सी, जिस साधन दे नाल, जिस वहीकल दे नाल तुसी अपनी यात्रा जो है उसनू तय करना सी, एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बॉडी, जड़ी अजीवात्मा इस दे विच ड्राइवर की तरह बैठा हो। बाबा जी आखते हैं किसी भी यात्रा ते सक्सेसफुली पहुंचने के वास्ते जो उसका वहीकल है उसका परफेक्ट कंडीशन दे विच होना एब्सोल्यूटली लाजमी। जे वहीकल बिगड़िया होया, जे वहीकल रिलायबल नहीं है, तो वो यात्रा जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकती। महाराज जी साढ़े वहीकल नु की होया, वट इज रॉन्ग विद अवर वहीकल? वो आखते हैं इत्थे बस नहीं, जदों किसे ने किसे वहीकल दे विच अपनी यात्रा करनी होवे तो उसनु अपने वहीकल दा ए टू जी पूरा पता होना चाहिए, पूरा पता होना चाहिए। तो गुरु साहब देखते हैं कि सानू अपना ये जो शरीर वहीकल है इसका कुछ भी पता नहीं, बस असी जन्म ले लिया है, शरीर सानू मिल गया है, भुख लगती असी खा लें, नींद आती असी सौ लें, प्यास लगती असी पी लें, बोल चाल लें, होर जो शरीर के फंक्शन हैं असी वो कर लें, पर सानू इस वहीकल का कोई पता नहीं है ये की चीज है, ये की चीज है। तुसी अपनी यात्रा किवें सक्सेसफुली अकम्पलिश करो जदों तुहानू अपने वहीकल के मुतलिक ही कोई पता नहीं, एक की वस्तु की है। नंबर एक, दूसरी गल ए है जो साडे जीवन दे विच परमार्थ, रूहानियत, आत्मिकता, स्पिरिचुअलिटी, पीस ऑफ माइंड, स्टिलनेस, स्टिलनेस ऑफ माइंड, कामनेस ऑफ माइंड, इनर जॉय एंड
ਇਨਰ ਬਲਿਸ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿੰਦੀ, ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੋਵਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸੁਣੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ

काया कमली है चली उन्हां चीजां दे विच खो गई है गुम हो गई है रच गई है जड़िया चीजां ने इसे नु ही खराब करना है। स्वाद हन इसलिए ही काया दे वास्ते ही डैमेजिंग बन जाते हैं लेकिन काया उन्हां दी एडिक्टेड हो जाती है इस करके कहते काया कमली अल्कोहल काया लिए अच्छी है लेकिन काया नु नहीं पता काया उसकी एडिक्टेड हो जाती है जो चीज ने इसे नु ही बर्बाद कर देना है। तो ड्राइवर जो अंदरला है वह बहुत कमजोर है ओ काया दा गुलाम हो चुका है काया ने ड्राइवर नु टालिया है काया जो मंगदी है वह उसनु प्रोवाइड करी जा रहा है। काया कमली हंस इयाना ते जिहड़ा हंस है जिहड़ी अंदरली आत्मक जोत है वह कहिंदे हले बहुत मध्यम है वह न्याणा है वो हाले उस बुजुर्गी नहीं आई क्योंकि उसने बुजुर्गों की महापुरुखों की विचार अपने अंदर ग्रहण नहीं की ना सुनी ना समझी ना विचारी ते उस दे अंदर बुजुर्गी नहीं आई वो इयाना है जिधर काया लाई फिर है उसके पास वो चलिया फिर है सारी ह्यूमन सोसायटी जी है वह काया के पिछे चल रही है सारी ह्यूमन सोसायटी काया ही प्लीज करने के लगी पई है। काया कमली हंस इयाना एक पंक्ति छोर आखते हैं महाराज जी कहते हैं।

आशा बंदी मूर्ख दे, ए दे बड़ी मूर्ख है, अगां तो अगां दियां आसां बंदी जा रही है, पर इस देही नूं ए नहीं दिसदा कि मैं बड़े लंबे समय दे फ्यूचर दे वास्ते अपनियां जो आसामां बंदी हां, पर ए नहीं सोचदी कि मैं रहना कदों तक है, कि डे बाय डे मैं ताकतवर होना है कमजोर होना है, डे बाय डे मेरी एज घटनी है या बदनी है, डे बाय डे मेरा एनर्जी लेवल बदना है या घटना है, इस करके एक कंसर्न ही नहीं है। इसका जीव आत्मा इतना न्याणा है कि वह सोचना नहीं कि दिस इज गोइंग टू बिकम वीकर एंड वीकर एंड वीकर, इस दे वास्ते टाइम से इस तो मैं अपना कम लवा, और सगों इस दे नाल रलिया होया है अते काया ये जड़ी बड़ी मूर्ख है। तो यह साड़ी सत्संग की हालत है कि इंद्रियां सबल हैं, असी इन्हां नूं वरतना सी पर यह हुण सानूं वरत रही हैं, असी इन्हां नूं वरतना सी पर वरत ए रही हैं सानूं। तो कितनी ट्रेजेडी की गल है, कितने अफसोस की गल है। महाराज जी ने ए इंद्रियां सानू दित्तियां सन कि इन्हां दे नाल असी अपना परमार्थ की जो यात्रा है वह सिद्ध करनी है, सफल करनी है। और फिर महाराज जी पूछते हैं, भाई ए शरीरा मेरिया इस जग में आए कि क्या तुद कर्म कमाया, कि तू की कीता है, तू तो सारे दे सारे अपने इस इंस्ट्रूमेंट को ही डैमेज कर लिया है। पूंडी चाल कहिंदे अखीर जाके बिरध उम्र दे विच जाके तेरी चाल भी नहीं सुनी रह जाती, डगमगा के तुरदा है, सोटी दे नाल तुरदा है, लंगड़ा के तुरदा है, पूंडी चाल यानी चाल ही अगली हो जाती, चरण कर खिसरे, हाथ अते पैर ओ खिसक गए हैं, वह कंबदे हैं। तुचा देह कुमलानी, जड़ी देही दी तुचा है, जड़ी स्किन है, चमड़ी है, यह ते कुमला गई है, ते झुरड़ियां पै गई हैं, फिर असी प्लास्टिक सर्जरी करा के उसनु असी लिफ्ट देने हैं, अपलिफ्ट कराने हैं। तुचा देह कुमलानी, नेत्री धुंद, उन्हां अखियां ने जिन्हां ने ज्ञान पढ़ना सी, साधुआं दे दर्शन करने सन, वह कुछ होर कर दियां रहियां, गुरमुखां दे दीदार नहीं किते, गुरबाणी दे दीदार नहीं किते, गुरबाणी पढ़न दा मौका नहीं मिलिया, गुरबाणी पढ़न दा इंटरेस्ट नहीं बनिया, सतपुरखां दे विचार पढ़न दा इसने इस्तेमाल नहीं लिया, हुण कहिंदे नेत्री धुंद, नेत्रां दे विच भी धुंद आ गई है, फॉग आ गई है, क्लीयर दिसदा नहीं, कर्ण पै बहरे, हुण कन्नां तों भी घट सुणदा है, कन्न मिले सन सत्संग सुनण लई, रब की गल सुन ली, उस पाथ से चलने के वास्ते वध तो वध इनफॉरमेशन सुनने के वास्ते, पर कहते हैं हुण वह भी समान लंघ गया, कर्ण पह बहरे मनमुख नाम न जानी, इस मनमुख ने नाम रूप वस्तु नू कहते जिस दे नाल इसने थ्रिल्ड होना सी, फुलफिल्ड होना सी, कंप्लीट होना सी, कंप्लिश्ड होना सी, सक्सैसफुल होना सी, वह कहते इस मनमुख ने जानी ही नहीं। ता महाराज जी इस इंसान नू कहते हैं, अंदले क्या पाया जगया, ओए अन्ने तू इस जगत दे विच आके की पाया है, की प्राप्त कीता है,

मानस जन्म दुलंब है, होए ना बारंबार, जो वन फल पाके पोहिंगरे बहर न लागे डार। जिस तरह दरख्त दे नालों टुट के फल नीचे गिर जाए ते दोबारा ओ टाणी दे नाल नहीं लगदा, एक दफा ए दुर्लभ तन जो है जदों गिर जाएगा धरती उते, फिर इस दे वापस उठन दी कोई उम्मीद, कोई आशा, कोई चांस बिल्कुल नहीं है, ये दुर्लभ। सो वी आर कैरिंग समथिंग विच इज सो इनवैल्यूएबल। हाउ वेल्थी वी आर एंड हाउ मच थैंकफुल वी आर, वी नीड टू आस्क दिस टू अवर सेल्फ। दूसरा नुक्ता, नंबर एक दुर्लभ, दूसरा नुक्ता गुरु बाबा जी आखते हैं यह मंदिर है। कदे असी सोचे कि मैं ही मंदिर हां? आप जी ने कितनी दफा ये विचारिया सोचा होएगा कि यही मंदिर है? बाबा जी की बाणी दसदी है कि मंदिर की है। जो सोचते विचारते जानते हैं ऐसे गुरमुखों नूं तां मैं नमस्कार करदा हां, पर असी बाणी चों तन दे प्रति, बॉडी दे प्रति ही इनफॉरमेशन नहीं लई, असी कई दफा बाहरों इनफॉरमेशन इकट्ठी करते फिरते हां, जबकि साडे गुरु साहिबान ने इतना भरपूर ज्ञान बख्शिया है सिर्फ बॉडी दे मुतलक ही। अज इत्थे 10 दिन कीर्तन करिए इस चीज दे उत्ते ही, सिर्फ इस चीज दे उत्ते ही, तां भी ओ इनफॉरमेशन जो है ओ कंप्लीट नहीं हो सकेगी कि बाबा जी ने तन दे उत्ते सानू की कुछ दसिया है कि तन की चीज है, पर असी उसनू किसे होर ही फैशन च पढ़ते हैं। सोच विचार के पढ़ना, ज्ञान नाल पढ़ना ओ होर चीज है। आओ दूसरा नुक्ता, दूसरा पॉइंट महाराज जी दसते हैं ए मंदिर है, टेंपल ऑफ गॉड, दिस इज द रियल टेंपल, इस तो बिना होर कोई टेंपल नहीं। बाणी च किते नहीं आखी, कहिंदे ए मंदिर है, बाणी दा प्रमाण सुन, कहिंदे हन

स्पष्ट है नुकता, हर मंदिर ये शरीर है, ये शरीर हरि का मंदिर है, फिर तो इसमें भी नमस्कार करनी बनती है, फिर तो ये पूजन योग है। जे ये हरि का मंदिर है, हर मंदिर ये शरीर है, काया महल मंदिर घर हर का, हरि अकाल पुरख वाहिगुरु जी का एक घर है, अकाल पुरख वाहिगुरु के निवास का स्थान है। तो फिर सानू इस मंदिर नू मंदिर की तरह रखना चाहिए है। मंदिर के अंदर की होंदा है, मंदिर के अंदर शांति होंदी, मंदिर के अंदर पूजा होंदी है, मंदिर के अंदर कीर्ति होंदी है, मंदिर के अंदर रेवरेंस होंदी है। मंदिर के अंदर पवित्रता ही होंदी है, पवित्रता ही होंदी है। मंदिर के अंदर रब्बी संगीत होंदा है, डिवाइन म्यूजिक होंदा है, कीर्तन होंदा है। मंदिर के अंदर संगत होंदी है, साथ संगत होंदी है। अगर ये मंदिर है तो फिर इस मंदिर का जो एनवायरमेंट है वो सारा मंदिर वर्गा ही होना चाहिए है। अगर ये मंदिर है तो इसके अंदर शांति होनी चाहिए है, टिकाव होना चाहिए है, इसके अंदर हर वक्त पूजा आराधना होनी चाहिए है, इसके अंदर सत्संग होना चाहिए है। मंदिर च प्रभु जी का निवास होंदा है, गुरुदेव होंदे हन, इस मंदिर दे विच भी हर वेले गुरुदेव की प्रेजेंस महसूस होनी चाहिए है। मंदिर दी असी कदे बेअदबी नहीं करते, उपर असी जोड़ा पा के नहीं आ सकते क्योंकि बेअदबी हो जाएगी, फिर इस मंदिर की भी बेअदबी नहीं होनी चाहिए क्योंकि मंदिर की बेअदबी बड़ा वड्डा गुनाह है। इस मंदिर की जो कि इट्टा नाल लकड़ियां नाल पत्थरां नाल बनया है, असी कितने कंसर्न हां कि बेअदबी ना होवे, पर इस मंदिर की बेअदबी जितनी मर्जी हो जाए उस दे वास्ते असी कदे कंसर्न नहीं हां। सर्टन थिंग्स तुहानू पता है कि असी इस मंदिर च नहीं लिया सकते, खाण वालियां पीण वालियां इस मंदिर च असी नहीं लिया सकते, ना असी इत्थे कुक कर सकते, ना बना सकते हां, ना वरता सकते। अगर लै आइए बनाइए खाइए पीए तो इतने झगड़ा हो जाएगा, पर वो वस्तुआं इस मंदिर च असी किवें लै जाने हैं जिसनू महाराजी मंदिर आखते हैं। इस मंदिर च असी वो तमाम चीजा ता ही ले जाने हैं कि सानू ये ज्ञान ही नहीं मिलिया गुरु बाबा जी की बाणी तो हाले तक कि असल मंदिर इंसान आ तेरा शरीर है, इस मंदिर के अंदर उ कुछ ले जा जो जानने योग है। इस मंदिर दे विच कोई भी ऐसी वस्तु पाई जो योग नहीं है, बहुत वड्डा गुनाह अते बहुत वड्डा पाप हो जाएगा। इस मंदिर नू पवित्र तो वध के पवित्र रख, इस मंदिर दे अंदर दा वातावरण जो है वो पवित्रताई वाला रख, पर साडे अंदर की है वैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महा लोभ त्रोह याहू जुगत बिहाने कई जन्म नानक राख ले हो अपन कर कर्म। असी तो ये कुछ पाई बैठे हाँ तो मंदिर की कितनी वड्डी असी बेअदबी कर रहे हैं। तन दे मतलब जो कि एक इंस्ट्रूमेंट है, व्हीकल है, पर

क्रोध नाल प्यार करते हैं। हजूर फरमांदे झूठ बोलना मुर्दार खाना चंगा लगता है, किसे नाल त्रोह करना ए इनू मिठे लगते ने। हजूर कहते ने ऐ वाहगुरु इन्हां नू रख लै इन्हां औगणा तों।

आओ भाई बंदी छोड़ नू अरदास की पीसीना। आच्छा सी कैद हुए पे मेर कर सानू इस कैद तो बंद खलासी कर अपना पल्ला पकड़ा। गुरु पंचम पातशाह अरदास कर दे पंच दूत मूड पर ठा।

समुद्र विच उठ दिया हैं। खालसा अकाल पुरख की फौज, प्रगट्यो खालसा परमात्म की मौज। पर एक गल, जे किसे नू वड़ियाई देनी है ते उहदे कोल कुछ उम्मीद भी रखी दी। जे खालसे नू वड़ियाई दित्ती ते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने कल्ली वड़ियाई नहीं दित्ती, पहला उम्मीद रखी ते कह दिता जब लग खालसा रहे न्यारा, तब लग तेज दियो मैं सारा। जदों तक खालसा खालसा रहेगा उदों तक खालसे विच मेरा तेज होवेगा, मेरी सारी शक्ति होवेगी। जब लग खालसा रहे न्यारा, तब लग तेज दियो मैं सारा। जाबे गहे विपरन की रीत, मैं ना करूं इनकी प्रती। जदों ये खालसा पंडतां दियां रीतां ते तुर पिया, भाव अपने असूलां तो जदों ये पिछे हट गया ते फिर ए दे विच मेरा तेज नहीं रहेगा, फिर इन्हां दा राह वखरा ते मेरा राह वखरा होवेगा। मैं खालसे दे विच उदों तक हां जदों तक खालसा मेरे असूलां ते रहेगा, ते जे इन्हां दा असूल कोई नहीं ते फिर ये मेरे कोई नहीं। आखो सतनाम श्री, क्योंकि गुरु साहिब जी जो कहिंदे हन पहला ओ ते फिर रहतनामे संसार दे विच। पीर पैगंबर ते बड़े हुए, पीर पीर रहे, सेवक सेवक, भगवान भगवान रहे, पुजारी पुजारी, पर गुरु नानक दे घर गुरु चेले बन गए ते चेले गुरु बन गए। आखो सतनाम श्री वाहे। और इत्थों तक क्या

मरूं जे रस ना पाऊं। मेरे शरीर ते जिन्ने रोम ने, एक शरीर ते करोड़ा रोम होंदे ने। जिहड़ा साडा शरीर है करोड़ा रोम होंदे हन हर बंदे दे शरीर ते। ते साहिब जी कहिंदे ने इह जिहड़े मेरे शरीर दे रोम ने करोड़ा रोम, इह सारे जीव बन जाण। रोम रोम जे रसना पाओ तदप खालसा जस तैगा। इतनी वड्याई दित्ती, मेरे शरीर ते जिन्ने रोम ने ये सारे जीव बन जाण, ते इन्हां करोड़ां जीवां दे नाल मैं खालसे दा जस गावां। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। ये वड्याई दे रहे।

दिग्विजय ने पूछा, महाराज तुसी कहंदे हो सब कुछ खालसा है, जे सारा कुछ ही खालसा हो गया ते फिर तुसी ते गुरु साहब जी जवाब दें।

कितनी बढ़ियाई दी थी और इतों तक चले गए। कहन लगे खालसा मेरी जान की जान। और इस तू पहली पंक्ति खालसा मेरो पिंड प्राण, खालसा मेरी जान की जान। पिंड कहंदे ने शरीर नू, खालसा मेरा शरीर है, खालसा मेरो पिंड प्राण, और खालसा मेरे प्राण है, और खालसा मेरी जान है, खालसा मेरा मां बाप है, खालसा मेरे भैन भरा है, खालसा मेरे रिश्तेदार, और खालसा मेरा सज्जन मित्र है। और इथों तक कह दिता गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का सारा इतिहास पढ़िए। उन्होंने किधरे कसम नहीं खाधी, पर जद खालसे की गल आई तो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने खालसे वास्ते एक कसम खाधी। की कहते हैं, पार ब्रह्म गुरु नानक साखी। मैं पार ब्रह्म गुरु नानक नु साखी रूप जान के यह कहना कि खालसे विच अकाल पुरख विच ते मेरे विच कोई फर्क नहीं।

बाजत बसंत और पैर वहलोल राग ये 11 रागों का गुलदस्ता 11 राग इकट्ठे आप जी ने शरण किए हैं जो कि गायन विच ये बहुत कठिन हैं। सत आप संगत की आशीर्वाद सदका ही मेहनत करके योजना चीजा जो गायन कीतिया जाए तो सतसंग जी ये स्वरां का मिलाप है जो सत स्वरां गुरुआं ने गुरु नानक साहब जी ने गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने सारे गुरु साहबां ने सत स्वरां दे विच गाया है तो शरंदे दे नाल गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने इन्हां सत स्वरां विच कीर्तन किया सारे गावां पाधानी सा ये सत स्वर तो इन्हां स्वरां नूं गुणी जना ने विद्वान लोगों ने ऋषियां ने मुनिया ने पीरां पैगंबरां ने सारे ने इन्हां सत स्वरां नूं गाया। एक विद्वान ने बहुत ही सुंदर लिखा है ये सत सुरां सानू कित्थों मिलियां हन पंक्षियों की आवाज तो सत सुरां सानू प्राप्त होईयां। सब तो पहला जदों विद्वाना ने सात सुर लभ्या है तो सात सुर कित्थों मिलिया उन्हां कहे मोर हूं की बाणी को सुधार खर जबान दिओ। जद मोर बोलिया जंगल दे विच तो उन्होंने मोर की आवाज नूं सात सुर मन लिया सा बन दिता मोर हूं की बाणी को सुधार खर जबान दिओ। चातरक की आवाज से रिखब सुर भरी है जदों चातर कपपिया बोलिया तो रे सुर लग्या तो विद्वाना ने रे बन लिया ये रे बन गई सा रे। चातर की आवाज से रिखब सुर भरी है अजा की आवाज से गंधार का उचार कियो अजा मैंने भेड़ है जदों भेड़ बोलदी तो गाल सुर लगता है अजा की आवाज से गंधार का उचार कियो। कूंज के कुरलाप से मध्यम सुर भरी है जदों कूंज करलाउंदी है तो मध्यम सुर लगता है मान सुर लगता है। कूंज के कुरलाप से मध्यम सुर भरी है कोयल हूं की कूक हूं ते पंचम बनायो विद। जदों अंब की डाली ते बैठ के कोयल कूकदी है ते फिर पंचम सुर लगता है कोयल हूं की कूक हूं ते पंचम बनायो विद। दादर की आवाज से दैवत सुर उचरी है दादर मैंने डड्डू जदों डड्डू बोलता है ते दा सुर लगता है। दादर की आवाज से दैवत सुर उचरी है माते गज राजन की रंगून से निषाद लीनो। गजराज हाथी रंगून मैंने चीख जदों जंगल दे च हाथी चीखदा है ते नी सुर लगदी है माते गज राजन की रंगून से निषाद लीनो इतनी निर्वाण जान सातो सुर कही है। विद्वाना ने यह सत सुरां इस तरह कहियां हन तो सतसंग जी यह संगीत जो है इथों दे बच्चे सारे बड़ा कीर्तन करते हैं कीर्तन सीखते हैं तो आप जी का सारे का फर्ज है इत्थे जो कीर्तन की लहर परंपरा चली है बहुत ही आनंद आता है जो बच्चे कीर्तन सीखते हैं क्लासीकल कीर्तन दे मन जोड़ते हैं। ये तुहाडा बहुत वड्डा उपराला है माता पिता का जो बच्चों कीर्तन दे नाल जोड़ रहे आओ। सिख संगतां वालों गुरु कलगीधर पातशाह जी के अमृत के बारे रहत के बारे हुक्म होया सी कि दोष